गावन तुदनो जति सति संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पढ़न रखीश्वर, जुग जुग वेदा नाले।

तिरंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्योतिष दी वडियाई ज्योतिष भावै

हर जन केवट भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संग।

जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुरु संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास।

तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन में सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद।

पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतोह जी सब दुख।

नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आदंतिक अवतारा, सोई गुरु समझे हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सुवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। चीटी ते कुंच

सुख पाए साधन के सुखी, एक एक ही पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने, जब उद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा, जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम, निरंकार निरपकार निर्लंब, आद नील अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको पहेव न पावत बेदा, ताको कृपाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पेव, आप अपनी बुद है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम।

तजकीनी उत पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा शिगरे श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुझ तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्यै है ताके काल निकट नह है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताके ताप तनक मह हरे हो रिद्ध सिद्ध कर मुँह सब होई दुष्ट चाह छव सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें सुभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दार

आई, दुष्ट दुख ते नेहु बचाई। सुवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने हूँ। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न मान्यो, सिमृत शास्त्र बे

जिसका सब सुधारो। जेको खावे जेको पुंचे तिसका हुए उधारो। एह वस्त तजी न जाई नित नित रख उरतारो। तम संसार चरण लग तरी है सब।

पौड़ी जिथे तू समरथ जिथे कोई नाहे उथे तेरी रख अग्नि उदर माहे सुन कै जम के दूत नाई तेरे चढ़ जाहे।

गुरु नाओ, सतगुरु से तीरतया दरगह पाई ठाओ। कहो नानक किरपा करे जिसनु एह वत दे जग।

आओ गुरु की प्यारी सास संगत जी, हूं टाइम होया कथा का। बहुत ही सत्कार भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी खुश दिल आप जी लड़ीवार कथा राह निहाल कर संगता ने बड़े प्यार सत्कार नाल बैठ के कथा नु श्रवण करना है। फतेह बुलाओ सारे वाह जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

गुरपुरा जिन सिमरिया से पे निहाल नानक नाम आराधना कर्ज आवहिं रस सो दर के हा सो कर के हा जित बह सर्ब संभाले

किते राग परिसियों कहियन किते गावण हारे गावे तुहनो पौन पानी बसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गाँव चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गाँव ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गाँव इंद इंदासन बैठे देवतें दर नाले गाँव सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गाँव वीर करारे गावन पंडित पढ़न रुखी सुर जुग जुग वेदानाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले।

गावन से मैं चित नयावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब सचा सची नाई हैपी होसी जाय न जसी रचना जिन रचाई।

महाराज कह रहे ने मांगना सारा कुछ है, जिवें भगता ने मंगया खाट मांगो चौपाई सिरखाना और तुलाई गऊ पैस मंगो लावे। भगत खन्ना जी कहते ने सारा कुछ ही मंग लिया, निक्किया निक्किया चीजा भी, पर पकड़ नहीं है। प्रीत महाराज के नाम नाल ये जिंदगी दियां लोड़ां ने। सतगुरु कह रहे ने जो मंगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। जे पुत्र मंगिया, जे घर दी दात मंगी, कारोबार दी दात मंगी, कहिंदे ने फिर पुत्र वाली दात विच्चों भी दाते नूं वेखना। कई बारी होंदा ऐसा है मंगण लग्यां मन दी अवस्था कुछ होर है, पर जदों भाग लगे फिर दात नाल जुड़ गए। असीं अपने बच्चे दा नाम बाणी विच्चों हुक्मनामे विच्चों तां रखदे हां, सतगुरु आवाज बच्चे नूं लावां पर मेरी रसना पवित्र हो जाए। महाराज कह रहे ने सारा कुछ मंगना है, पर अटैचमेंट जिहड़ी है वह महाराज के नाम नाल होवे, भावना ऐसी होवे मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। सतगुरु कह रहे ने पकड़ महाराज के नाम की होवे ते फिर दुख भी सुख बन जाते। एक एक पंक्ति बड़ी भावना नाल गायो, सतगुरां दे सोहणे दरबार विच्चों सब दियां झोलियां भर जाणा।

सोनिहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

की कथा नाम सुन तो दर्द दुख लता। नाम की महिमा संत ऋतुवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग बड़भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तुल कछि अवर ना हुए, नानक गुरमुख नाम पावे जन को। इसलोक बहु शास्त्र बहु सिमरति, पेखे सर्व टंडोल। पूजिस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल अष्टपदी। जाप ताव ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत ज्ञान। जोग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया, सगल त्याग वन मध्य फिरिया। अनेक प्रकार किए वो जतना, पुन दान हो में बहु रतना। शरीर कटाए हो मैं कर राती, व्रत नेम करे बहु पाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए कबार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, माँ उदास तपी सरती वे। अग्न मायो मत प्राण, कनिक सुहै वर पूम दान। नेवली कर्म करे बहु आसन, जैन वारुक संजम साधन। निमुख निमकर सूरी कटावे, तौ पी हो मैल न जावे। हर के नाम सुन सर कछ नाही, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि। मन कामना तीर्थ दे छुट्टे, गर्भ गुमान मन ते उठे। सोच करे दिन सर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबो न भिख्या टरे। जाल तो है बहु दे अनी, सुध का होय काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहुमूच। बहु सियान भुजम का पाव ब्या, पैनिक जतन कर तृष्णा त्रापै। पेख अनेक अगनि बुझै, कोट पाव दर गहने सिजै। छूट सुनहि उपयाल, मय व्यापै माया जाल। अवर करतूत सगली जमडान, गोबिंद भजन बिन तिन नहीं माने। हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोले सह सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे, साजना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सुध गावे। जे को अपनी शोभा लूरे, सा संगी हो मैं छोरे। जे को जन्म मरण ते डरै, साजना की सरनी परै। जिस जन को प्रभु दस प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, सा समझा का मिटै अभिमान। आपस को जो जाने नीचा, सो गणी है सब ते ऊंचा। जा का मन हो सगल किरीना, हर हर नाम तुन घट घट चीना। मने अपने ते बुरा मिटाना, पेख है सगल सिर साजना। सुख दुख जन समझ स्थिरता, नानक पा पुन्य लेपा। निर धन को धन तेरो नाओ, नितावे को नाओ तेरा थाओ। निमाने को प्रभ तेरु मान, सगल कटा को देव दान। करण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। अपनी गतमत जानू आपे, अपन संगा प्रभराते। तुमरी युष्ट तुम ते हुए, नानक कवर ना जान सकोए। सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, सा संग दुर्मत मल हिरिया। सगल उद्यम में उद्यम भला, हर का नाम जपो जी सदा। सगल बानी में अमृत बानी, हर को जसन रसन बखानी। सगल थान ते उत्तम थान, नानक जी कट वसै हर नाम। सलो निर्गुण यार एनिया, सो प्रभ सदा संभाल। जिन किया तिस चीत रख, नानक निभही नाल अष्टपदी। रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूलते कवन दृष्टानी। जिन तू सासुआर सी गारिया, गर्भगन में जिने उबारिया। बार व्यवस्था तुझे प्यार है, दूध पार जोवन भोजन सुख सूद। बिरद पया ऊपर साक्ष है, मुख पयाओ बैठ को जैन। एहो निर्गुण गुण कछु न बूझे, बख्श ले हो तो नानक सी जय। जे प्रसाद धार ऊपर सुख बसै, सुत प्रात मीत बनता संघ सह। जे प्रसाद पीवे शीतल जला, सुखदाई पवन पावक मुला। जे प्रसाद भोगै सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा। दीने हस पाव करने तरसना, तिसे त्याग वर संगरचना। ऐसे दो उड़ंद व्यापे, नानक काड लेहु प्रव्यापे। आदंत जो रखन हार, तिस्यो प्रीत न करे गवार। जाकी सेवा नव निध पावे, तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे। जो ठाकुर ससदा हजूरे, ताकू अंधा जानत दूरे। जाकी टहल पावे दरगह मान,
तिसह बिसारे मुग्ध अजान सदा सदै भूलन हार नानक रखन हार अपार रतन त्याग कौटी संग रचै सा छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर कर माने जो होवन सो दूर पराने छूट जाए तिसका श्रम करे संग सहाय तिस पर हरे चंदन लेप उतारे तो ये गर्द प्रीत भस्म संग होए आंध खूब में पतत बिकराल नानक काड ले हो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर बेखंतर मल माया छप सुनाए कछ करे छुपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोभ सुवान अंतर अगन बाहर तन स्वाहा गल पाथर कैसे तरह था जाके अंतर बसै प्रव्याप नानक देजन सह समात सुने अंधा कैसे मार्ग पावै कर गहले होड़ निभावै कहां बुझारत बूझै डोरा निष्कहिए तू समझे पूरा कहां बिशन पद गावै गुंग जतन करे तो भी सुर भंग कै पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तू आस गवन करतार करुणा में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे संग सहाय सुहावै न चीत जो बहराई तस उपरीत बलुआ के गृह पीतर बसै हनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर माने मने प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत पैर विरुद्ध काम क्रोध मोह झूठ बेकार महान लोभ द्रोह आहु जुगत बिहानी कई जन्म नानक राख लियो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत उचे ते उचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते हुए सुआज्ञाकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास दा कुर्बानी श्लोक देन हार प्रभ छोड़ कै लागे आन सुवाई नानक कहू न सीजई बिन नावै पत जाय अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावै एक वस्तु कारण विकोट गवावै एक भी न दे दस भी हिरले तो मूड़ा कहू कहा करे जिस ठाकुर सो नाही चारा ताको पीजै सद नमस्कारा जाके मन लागा पर मीठा सर्व सुख ताहु मन उठा जिजन अपना हुक्म नाया सर्व थोग नानक तिन पाया अगंत सा अपनी दे रास खात पीत बरतैन दुलास अपनी मान कछ बौर साहु ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीता भी खोवे बहुत उसका विश्वास न होवे जिसकी वस्तु सियाखै रखै प्रभु की आज्ञा मान्य मत है उस्ते चौगुन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनिक पाद माया के हेत सर प्रहोत जन अनेक बिर की छाया सो रंग लावे उ बिन से मन पछतावे जो दिसै सो चालन हार लपट रो ते अंध अंधार बटाओ सो जो लावे नेहि ताको हाथ नावे के मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानक आपले लाई मिथिया तन तन कुटम सुभाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राजन तन मार मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अस्त वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रो मोह अभिमान मिथ्या पशु पर कर्त गुमान अस्थिर पग सादगी शरण नानक जप जप जीव हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्भ को ही रह मिथ्या नेत्र पेख पर भोजन स्वाद मिथ्या चरण पर विकार को ताप है मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन्नी पर उपकारा मिथ्या वास लेत विकारा बिन बूझे मिथ्या सपहे सफल दे नानक हर हर नाम लय बिरति साकत की आरजा साच बिना कह होत सुचा बिरता नाम बिना तन अंध मुकावता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बृता बिहाय मेघ बिना जो खेती जाय गोविंद भजन बिन वृथे सब काम जो कृपन के निरास दाम धन धन ते जन जी कट बस्यो हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ रहत अवर कछवर कमावत मन निप्रित मुखो गंडलावत जानन हार प्रभु परवीन बाहर फेंक न काहू पीन अवर उपदेश आप न करे आवत जावत जन में मरे जिसके अंतर बसे निरंकार जिसकी सीख तरह संसार जो तुम पाने इतने प्रभु जाता नानक कुंजन चरण पुराता
करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया या पहमान या पहया पाप करत नबेरा किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा पाप सियान सगल तेरे सब का जाने आत्म की रह जिस पावे तिसले लड़ लाए तां तनंतर रहा सुमाए सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरी श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह पिंड सजाए अंग मेव नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदि जे प्रसाद छती अमृत काहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधित तन लावे तिस को सिमत परम गत पावे जे प्रसाद बसे सुख मंदर जिस इतिहास सदा मन अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पैर सिमरु तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्यागतवर लुभावे जे प्रसाद सुख शेष हुई जय मनाठ पैर ताका जस गावे जय जे प्रसाद तुझ सब को माने मुखता को जस रसन बखाने जे प्रसाद तिरु रहता धर्म मन सदा त्याहे केवल पार ब्रह्म रब जी जपत दर गहमान पावे नानक पत छेती घर जावे जे प्रसाद दारू कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तिरौला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरनी पर ठाकुर प्रवता कै जे प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सा सा सिमरो प्रभु उच्चे जे प्रसाद पाए दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अभूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अश्वहस्त सवारी मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी जे प्रसाद बाग मिलक तना राख प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठ सत सह त्याई तिसे त्याये जो एक अलख है यहाँ वहाँ नानक तेरी रख है ये प्रसाद करे पुन बहुता मनाट पैर कर तिसका त्याग ये प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सा सा चितारी ये प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदानूप ये प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने करण नाद जे प्रसाद पिखे बिस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसना जे प्रसाद हस्त कर चलह जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पाव है जे प्रसाद सुख सह समाव है ऐसा प्रभु त्याग वरकत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड रुथा को जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावे साज रे मन मेरे तुथा शिवराज जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए सर्व निदान प्रभु तेरी माया आपू कछु न किन्हु लया जित जित लावो तित लग गए हर नाथ नानक किनकै कछु न हाथ श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सुमुखता होए सुन मीता नानक बिनवंता साजना की चर्ज कथा अष्टपदी साधक संग मुख उज्जल होत साध संग बल सगली खोत साधक संग मिटे अभिमान साधक संग प्रगट है सुज्ञान साधक संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सब होत नबेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन साधक महिमा वरने कौन पुरानी नानक साध की शोभा परमा हिस्मानी साध के संग गोचर मिले साध के संग सदा पर फुल साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हो सब की रेन
साधक संग मनोहर बैन साधक संग में कथुम तावै साध संग स्थित मन पावै साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैरु साधक संग न बिगा पैरु साधक संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग ना ही होताप साधक संग तजै सव्याप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बनियाई साध के संग न कबहू तावै साध के संग सदा सुख पावै साध संग बस्तक उचर लह साधु कै संग अजर सह साध के संग बसै थान उचै साधु कै संग महल पहुंचै साधक संग जड़ै सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साधक संग सब कुल उधार है साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग सोभा सुर देवा साधु कै संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साधक संग सर्व थान गमु नानक साधक संग सफल जन्म साधक संग नहीं कचका हाल दर्शन भेट साधक संग कलुक तहरै साधक संग नरक पर हरै साधक संग इहां उहां सुहेला साध संग बिचरत हर मेला जो इच्छै सोई फल पावै साधक संग न बिरथा जावै पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदरै साध सुन रसै साधक संग सुनो हर नाउ साध संग हर के गुण गाउ साधक संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साधक संग लगै ब्रह्म मीठा साधु कै संग घट घट डीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संगत भई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा वेद न जानै जीता सुनै थिता बख्यानै साधक उपमा ते गुण ते दूर साधक उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा उचते उची साध की शोभा मुचते मुची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद न पाई सलो मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखे कुछ बिन कोय नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमला लेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक जैसे सूर सर्व को सोख ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागे तुल्पवान ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक ज्यो बसता को खुदै को चंद लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यो पावक का सह सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मलाओ जैसे मैल न लागे जलाओ ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुए प्रगास जैसे तारु पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र शत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उचते उच्चा मने अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पै नानक चिन्ह प्रव्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी कीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी को प्रयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कै होए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल भला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद
ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी का हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिसकर है प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खुज है महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन बाही, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाया दाख्यर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी कंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सदजीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी, श्लोक उर धारै जो अंतर नाम, सर्व में पेखै भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार, नानक अपरस सगल निस्तार, अस्पदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर त्रै रूप न पेखै नित्र, साथ की टहल संसंगेत, करना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद विख्या पर हरे, मन की वासना मन ते टरे, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा परसो, वैष्णो सो जिस ऊपर सुप्रसन्न, कृष्ण की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हो वै नहीं कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू बल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग्राचे, मन तने अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर हुवत कृपाल, आप दृढ़ अवर नाम जपावै, नानको वैष्णो परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म, सासन पापा मल खुवै, तिस भगवती की मत उत्तम हुवै, भगवंत की टहल करै नितनीत, मन तने अर्पै बिशन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सु पंडे जो मन प्रबुदै, राम नाम आत्मै शुद्धै, राम नाम सारस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो नाया वै, वेद प्राण सिमरत बूझे मूल, सुखम मैं जाने असूल, चौवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित कहो सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, सासंग पावै जन को ए, कर कृपा अंतर उतार है, पस प्रेत मुक्त पात्र को उतार है, सर्व रूप का उखद नाम, कल्याण रू मंगल गुण गाम, काहू जुगत कितै न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, जिसका नाम सतराम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास संतन पाहे तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दीर्घ परवान, अपने दास को आप कृपा करें, तिस दास को सब सो जी पर है, सगल संगा तुमो दास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आज्ञा तुम हितावै, जीवन मुख सो कहावै, तैसा हरक तैसा उसोक, सदानंद तै नहीं गयो, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा विमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरताय साई जुगत, नानको पुर कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित घर रख है तैसा तिन आओ, आपे करन करावन जोग, प्रभा है सोई पुन होग, पसर आप हो अंत तरंग, लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल, श्लोक उस्तत करै अनेक जन अंत न पारावार,
नानक रचना प्रभु रचि बहुविधनिक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन प्रमय उदासी कई कोट वेद के श्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम त्यावे नानक करते कंत ना पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपेगातम निकोर कई कोट पर दर्भ को ही रह कई कोट पर दुख ना कर है कई कोट माया श्रमाही कई कोट प्रदेश परमाही जित जित लाभ होते तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससियर सूर नखेत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूत धार है नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्तम सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत अर्शास्त्र कई कोट कीर्तन सबुद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट की सिर जीवे कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे कई कोट जकी नर पिसाच कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गाच सब ते नीरे सबूते दूर नानका फलित रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुरु निवासी कई कोट जन्म जीवे मरे कई कोट भोजोनी फिरे कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट काल थक बाहे कई कोट गिये तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय पाणा तै तै राखे नानक सब किस प्रभ के हाथे कई कोट भय वैरागी राम नाम संग चिंद लागी कई कोट प्रभ को खोजंते आत्म पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिलो प्रभ विनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिन कहो हो अब सुप्रसन्न नानक तेजन सदा धन धन कई कोट काणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट हो अवतार कई जूत किनो विस्तार कई बार पसरो पासार सदा सदा के कंकार कई कोट किन्ने बात प्रभ ते हो प्रमाय समाता कंत न जाने कोय अपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होत आत्म प्रगास कई कोट तत् के बेथे सदा निहारे को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवै अमर भय सद सद ही जीवै कई कोट नाम गुण गावै आत्म रस सुख सह समावै अपने जन को साथ साथ संवारे नान कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई नानक तिस बलिहारण जल थल मही अलसो अष्टपदी कई करण करावन करण जोग जो तिस भावे सोई होग किन मैं ताप तापन हारा अंत नहीं किछ पारा वारा हुक्मे धार धर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब मैं रहा समाई प्रभावै मानु गत पावै प्रभावै था पाथर तरावै प्रभावै बिनसास तिराखै प्रभावै था हर गुण पाकै प्रभावै था पत तुधार है आप करै अपन बिचार है दुहां सिरां काप स्वामी के लबिक से अंतर जामी जो पावै सुकार करावै नानक दृष्टि अवरण आवै कहु मानुक ते क्या हुए आवै जो तिस पावै सुई करावै इसके हाथ होए तां सब किछ ले जो तिस पावै सोई करे अनजान देखिया मैं रचै जे जानता अपना बचै पर मैं भूला दै दिस्तावै निमक माए चार कुंट फिरियावै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक तेजन ना मिले किन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब नवाजा का दिष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दा दिस प्रगठावै जा को अपनी करै बख्शीस ताका लिखा न गने जगदीश जीव पिंड सब तिसकी रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनता बनाई नानक जी वैदिक बढ़ाई इसका बल नाही सहात करण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस भावै सोई फुनतियो कबू ऊच नीच में बसै कबू सोग हर करंग हसै कबू निंद छिंद व्यवहार कबू बकास पयाल
कबहू बेता ब्रह्म विचार नानका मिला उनहार कबू निर्थ खरै बो पात कबू सोए रह दिन रात कबू मा क्रोध बिकराल कबू सर्व की हो तरवाल कबू हुए बह बड़ राजा कबू पेखारी नीच का साजा कबू अपकीरत में आवे कबू भला भला कहावे जो प्रभु राखे तिव ही रहे गुर प्रसाद नानक सच कह कबू हुए पंडित करे बखियान कबू मून थारी लावे ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान कबू कीट हस्त पतंग हो जिया अनिक जोन पर मैं परमिया नाना रूप जो स्वागी दिखावे जो प्रभावे तिवे नचावे जो तिस्पावे सोई होए नानक दूजा वरना कोए कबू साध संगत उपावे उस स्थान से बहुर न आवे अंतर विज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंत्र नाम ऋतिक रंग सदा वसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल में जल आए कटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभु कै सद गुरदान श्लोक सुखी वसै मसकीनी आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतराज विमान सो नरकपाती हो स्वान जो जाना में जो बनवंत सो होत विष्टा का जंत आपस को करवंत कहावे जिन मरै बो जो उन परमावे तन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे नानक या मुक्ता गै सुख पावे धनवंता हो कर गर्भावे तिन समान कर संग न जावे बोलस कर मानु कुपर करे आस पल पितरता का हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन मैं हो जाए पशवंत किसे न बदय आप अहंकारी धर्म राय तिस करे कुवारी गुर प्रसाद जाका मिटै अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे अवतारे श्रम पावे सगले बिरतारे तपस्या करे अहंकार नरक सुरक फिर अवतार अनिक जतन करा तुम नहीं द्रवै हर दरगह को कैसे गवै आपस को जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै सर्व की रेंजा का मन हुए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ हुए तब इसको सुख ना ही कोए जब ये जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे कुबैरी मीत तब लगने चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटे सहस कटे लग कूट तावै तृप्त न आवै माया पाछै पावै अनिक भोग विखिया के करे न तृप्त आवै कप कप मरै बिना संतोख नहीं गोरा जय सुपन मनोरथ बिरथे सब का जय नाम रंग सर्व सुख होए बिडभागी किसे प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक कर जाप करण करावन करने हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा हुए आपे आप आप रसोई जो कुछ किन सो अपने रंग सब ते दूर सबू कै संग बुझै देखे करे बवे का पह अनेक मरे न बिनसे आवे न जाए नाम सद ही रहा समाए आप उपदेशै समझै आप आपे रचिया सब कै साथ आप किनु अपन विस्तार सब कछु सकाउ करने हार उसते पिन कहो किछु होए तां तनंतर कै सोए अपने चलताप करने हार कौत करै रंग आपार मन में अमन अपनी बाही नानकी मुझ कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किने वकियानी सच सच सत सब कीना कोट मधे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप असुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कट सुनी श्रवण बकियानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन परै सो जन उतरन हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदि संत कै दुखन आरजा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन शोभा ते हीन संत के हथे गुर कह न कोई संत कै दुखन थान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक भीतर है संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग ज्यो लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगृ जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा में जलै
संत कह दुखन सब को चलाए, संत कह दुखन तेर सब जाए, संत कह दुखन नीच नीच आए, संत दुखी काता को नाए, ना संत पावे तो भीगत पाए, संत का निंदक मात ताए, संत का निंदक किन टिक न पाए, संत का निंदक महत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज देहीन, संत का निंदक दुखी हर दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख में दुख, नान संत भावे तो उसका पी हुए मुख, संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसै का निमित्त, संत के दुखी को डां लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी मां अहंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख ना सुख ते टरे, संत के दुखी को ना ही ठाऊ, नान संत भावे ता ले मिलाई, संत का दुखी अद बीच ते टूटे, संत का दुखी कित काज न पहुंचे, संत के दुखी को ध्यान परमाई है, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किच नाहि, अपन बीजा पे ही खाहे, संत के दुखी कवर न रखन हारु, नान संत भावे ता लय उबहारु, संत का दुखियों बिल लाई, ज्यो जल बिहु मछली तड़फड़ाई, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यो पावक इंद्र नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटे अकेला, ज्यो बुआड़ तिल खेत माही दोहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सदमिथिया कहत, किरत निंदक का तुर ही भया, नानक जो तिस भावै सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले स जाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरे न जीवाई है, संत के दुखी की पुजे न आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख न तृष्ट कोय, जैसा भावै तैसा कोई होय, पया कीर्तन मिटे कोय, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिसके करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तद करो दिन रात, सहते आहो सास गिरा, सब कछ वर्तै तिसका किया, जैसा करे तैसा कोसी, अपना के लाभ करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम दे बड़ भागी, नानक जन से श्लोक तजो से आनप सुरजन हो, सिमरो हर हर राए, एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम पौ जाय, अष्टपदी मानु की टेक वृत्ति सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रह अघाए, बहुर न तृष्ण लग आए, मार रखे को आप, मानु कह किछ नाही हाथ, तिसका हुकुम सुख होए, तिसका नाम रखंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन लागे कोए, उस्तद मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसनामृत पियो, सदा सोहेला कर लह जियो, नैनो पेक ठाकुर का रंग, सा संग बिन सह सब संग, चरण चलो मार गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक पूजल मत्था, बड़ भागी तेजन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करह विचार, से तनवंत गणी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, ए तुत की सोजी जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिने निरंजन जानिया, गुरु प्रसाद अपन आप सुजै, जिसकी जानू तृष्णा बुझै, सास संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत, अंदिन कीर्तन केवल बखियान, दृष्ट में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटी है जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसह न लागे दुख, जिसको हर प्रमन चित आवे, सो संत सोहेला नहीं डुलावे, जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक को किसते डरे, जैसा सा तैसा दृष्ट आया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजया, गुर प्रसाद तत सब बुझया, जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सूखम सोई स्थूल, न किछ जन्मै न किछ मरै, आपन चलता फ्री करै,
आवन जावन दृष्टन दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट आपे आप सगल मैं आप अनेक जुग त्रच था पुताप अविनाशी नाही किच खंड तारन तारे हो ब्रह्मांड अलख पे पुरख प्रताप आप जपाए त नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सो बावंत सगल संसार उदरै तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे मेले कृपाल गुरु का सब जप है निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करे बिट भागे नाम जपत पावे विश्राम नानक दिन पुरख उत्तम करमान जो किछ करे सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग सहज सुभाए हुए सो हुए करने हार पछाण सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तिस माहे सुमाए वे सुख निदान उन्हों बने आए आपस को आप दिन मान नानक प्रभ जने को जान श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जन नहार जाके सिमरन उतरी है नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गंड नहार गोपाल सर्व जी आया पे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे किसते बिरथा कोई नाही रे मन मेरे सदा हर जाप अवनासी प्रभ आपे आप आपन किया कछु ना हुए जे सो प्राणी लोचै कुए किस बिना ही तेरा किस काम गत नानक जापे हर नाम रूपवंत हुए ना ही मोह है प्रभ की जो सगल कट सो है तनवंता हुए क्या को गर्व है जा सब किस किस का दिया दर्ब है आतसूरा जे को कहा वै रब की कला बिना कहता वै जे को हुए बह दातार किस देन हार जाने गावा जिस गुरु प्रसाद टूटै हो रोग नानक सोजन सदा अरोग ज्यो मंदिर को थामे थमन त्यो गुरु का शब्द मने स्थमन ज्यो पाखा नाव चढ़त रहे प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर है ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुरु दर्शन देख मन हुए बिगास ज्यो माहो ध्यान में मार्ग पावे त्यो साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे तिन संतन की बांचो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर काहे बिल लाई है पूर्व लिखे का लिखिया पाई है दुख सुख प्रव देवन हार अवर त्याग तू तिसै चितार जो कछ करे सोई सुखमान भूला काहे फिरे अजान कौन बसताई तेरे संग लिपट रो रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माए नानक पत छेती कर जाए जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज मान लिहु मन मूल राम नाम हृदय महतूल लाद की संतै संचाल अवर त्याग किया जंजाल तन तन कै सब कोए मुकुजर हर दर कै सोए इहो व्यापार विरला व्यापार है नानक ताके सद बलिहार है चरण साध के तोय तोय पियो अर्प साध को अपना जियो साध की तूर करो स्नान साध ऊपर जाइये कुर्बान साध सेवा विडभागी पाइये साध संगार कीर्तन गाइये अनेक विघ्न ते साधु राखे हार गुण गाय अमृत रस चाखे उठ गई संत दरियाया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवालन हार भूखे कौ देवत आधार सर्व निदान जाकी दृष्टि माए पूर्व लिखे का लहना पाए सब किस तिस का करने जोग तिस बिन दूसर हुआ न होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मले करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोजन निर्मल थिया जा कै मन गुर की प्रतीत
तिस जने आवै हर प्रवचीत। भगत भगत सुनिया त्यो लोए, जाकै हृदय को होए, सच करनी सचता की रहत। सच हृदय सत मुख कहत, सची दृढ़ सचा आकार, सच वर्तै सचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता। नानक सो जन सच समाता, सलोक रूप नरेक न रंग के चित्र गुण ते प्रभ भिन्न, तिसे बुझाए नानक जिस होवै सो प्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन मै राख, मानुकी तु प्रीत्याग, तिस्ते परे नाहि किछु कोई, सर्व निरंतर एको सोए, आपे बीना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निधान दयाल बख्शंद, सा तेरे की चरणी पाओ, नानक मन हुवन राओ, मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग, हरन भरन जाका नितर होर, तिसका मंत्र न जाने होर। अनदरू मंगल सज्जा कै सर्व थोक सुनिए, करता कै राज मैं राज, जोग मैं जोगी, तब मैं तुभ ईश्वर गृष्ट मैं भोगी। त्याई त्याई भगत है सुख पाया, नानक पुरखा किन अंत न पाया, जाकी लीला की मित नाही, सगल देव हारे अवगाहे, पिता का जन्म के जाने भूत, सगल पुरोई अपने सूत। समत ज्ञान ध्यान जिंदे जन्ना, जन दास नाम त्या वैसे, त्यो गुण मैं जाको परमाई, जन्म मरै फिर आवै जाय, ऊंच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावै तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पे करै करंग, नाना बिद किन्नो विस्तार, प्रभु विनाशी एकंकार, नाना चलत करे खिन माहे, पूरे हो पूर्ण सब ठाए, नाना बिद कर बणत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवै नानक करनाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सोजन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सब माहि समाणी, सत कर्म जाकी रचना, सत मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत तेजन जाकर हृदय प्रवेश, सत निरत बुझै जे कोई, नाम जपता की गत होए, आप सत की असब सत, अपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सिर सो करने हार, वरन भूत करत विचार, करते की मित न जाने किया, नानक ज्योतिष भावै सो वरतिया, बिस्मन बिस्म भय बिस्मात, जिन बूझया तिसे आया स्वाद, प्रभ कै रंग राज जन रही, गुर कै बचन पदार्थ रही, हुए दाते जो काटन हार, जा कै संग तरै संसार, जन का सेवक सोवड भागी, जन कै संग एक लिव लागी, गुण गोविंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै, श्लोक आद सच जुगाद सच, है पे सच नानक होसी पे सच। अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्हार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत्यावनहार, आप सत सत सवतारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभक्ता, सुरत सत सत जनता, भुजनहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जिन मानिया, करण करावन तिन मूल पछानिया, जा कर दे विश्वास पर वे आया, तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया, पैते निरपो होए पिसाना, जिस्ते उपजा तिस माय समाना, बस्त माए ले बस्त गढ़ाई, ताको भिन्न कह न जाई, बूझै बूझन हार बवेक, नारायण मिले नानक एक, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जानै संग, प्रभु का सेवक नाम के रंग, सेवक को प्रपालन हारा, सेवक की राखै निरंकारा,
सो सेवक जिस दया प्रवतार है, नानक सो सेवक साथ साथ समार है। अपने जन का परदाटा कह, अपने सेवक की सर पर रख है। अपने दास को देव डाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत रख है, ताकि गत मित कोई न लख है। प्रभु के सेवक को न पहुंचे, प्रभु के सेवक उचते उचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दा दिस प्रगटाया। निकी कीरी मैं कल रख है, पसम कर लश्कर कोट लख है। जिसका शासन काढ़ ताप, ताकू रख दे कर हाथ, मानस जतन करत बात, तिसके करत बिरते जात। मारन रखे वरन कुए, सर्व जिया का रखा सोए, काहे सोच कर रे प्राणी, जप नान प्रबल कुडानी, बार बार बार प्रभ जपी है, पिय मृत्यु मन तंत्र पिय, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिसके चवर नाही दृष्टाया। नाम धन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग, नाम रजो जन त्रिपताने, मन तन नाम है नाम समाने, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सतकाम, बोलो जाजे बा दिन रात, प्रभ अपने जन की नी दात, करे भगता तुम कह चाई, प्रभ अपने सो रह समाई, जो हुआ हो सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पहचाने, तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कह न जानू, आठ पहर प्रभ सहजूरे, कहो नानक से जन पूरे, मन मेरे तिन की उठ ले, मन तने अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व दुख का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर सब पाप मिटावे, अवर सियानक सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। श्लोक सतपुरख जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाऊ, तिसकै संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ, अष्टपदि सतगुर सिक्की करै प्रतपाल, सेवक कौ गुर सदा दयाल, सिक्की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुर सिक्के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै, सतगुर सिक्को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी हे, सतगुर सिक्का हल्त फल सुवारै, नानक सतगुर सिक्को जी नाल समारै, गुर कै गृह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस कौ कर कछ न जनावै, हर हर नाम हृदय सत्यावै, मन बिचै सतगुर कै पासु, ते सेवक के कार्य रासु, सेवा करत हुए नेकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस बिस्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनेक बार गुर को बल जाओ, सर्व निदान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक कह आप नहीं कछ परमु, सह से अनपलया न जाइए, नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइय, सफल दर्शन पेखत पुनीत, पर सत चरण गत निर्मल रीत, पेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दर गय गवे, सुनकर वचन करण आगाने, मन संतोष आत्म पतियाने, पूरा गुर अखियो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भाव है तिस लय मिलाए, जे वाहे कुस्तत अनेक, सतपुरख पूर्ण बवेक, काहू बोल न पहुंचत प्राणी, अगम गोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत गिने न पाई, अनिक भगत बंधन नित कर है, चरण कमल हृदय सिमर है, सद बलिहारी सतगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, यो हर रस पावे जन कोय, अमृत पीवे अमर सोय, उस पुरखा नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणतास, आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे, मोह माया कै संग न लेप, मन में राखे हर हर एक, अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परम दुख तहते नासे, तप्त माए ठाठ वरताई, आनंद भया दुख नाटे पाई, जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेशे, पहुँचू का निर्भव हुए बसे,
सगल ब्याद मनते कह नसे, जिसका साधन कृपा धारी, सासम जप नाम मरारी, थित पाई चुके भ्रम गवन, सुन नानक हर हज श्रवन, निर्गुण

अष्टपदी। संत जना मिलकर हो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवरूपाव समीत विसारो, चरण खुल हृदय में उतारो, करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवत, ए तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आसरा को मन बाहे, सर्व रोग नानक मिट जाए। जिस तन को चार कुंट उठता वह, सो तन हर सेवा ते पाव है, ये सुख को नित बाचे मीत, सो सुख साधु संग परीत, ये शोभा को करे भली करनी, सा शोभा पज हर की सरणी, अनिक उपावी रोग न जाय, रोग मिटे हर अवखत लाए, सर्व निदान में हर नाम निदान, जप नानक दरगह परवान, मन प्रभु तो हर कह नाय, दाद स्थावता बैठाए, ताको बिघन न लागे कोए, जा कह हृदय बसे हर सोए, कल ताती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पाव बिन सह पूर्ण हो आस, भगत पाया तुम प्रगास, तित कर जाए बसे अविनाशी, कहो नानक काटी जमपासी, तत् विचार कह जन साचा, जन मर सुखा चुका चा, आवागवन मिटे प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, क्यों रतन जन्म का हुए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार, अनिक उपावन छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन वंचित नानक फल पाए, संग न चाल स्थिर तना, तू क्या लपटा वह मूर्ख मना, सुतमीत कुटंबर बनता, इनते कहो तुम कवन सुनाता, राज रंग माया विस्तार, इनते कहो कवन छुटकार, अस हस्ती रथ सवारी, झूठा डंप झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझे न बेकाना, ना बिसार नानक पछताना, गुर की मातू ले आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल बिक जाहे, आप जपो अवरा नाम जपाओ, सुनत कहत रहत गत पाओ, सार पूछत हर को नाओ, सह सुभाय नानक गुण गाओ तेरी उत्तर समैल, बिन सजाए हो मैं बिख फैल, ओहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास नाम संभाल, चाड़ सियान सगली मना, सास संग पावै सच थना, हर पूंजी संच करो बिहार, इहां सुख दर गै जयकार, सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख, एको जाप एको साला, एक सिमर एको मन आए, किसके गुण गाओ अनंत, मंथन जाप एक भगवंत, एको एक एक हर आप, पूर्ण पूरे हो प्रभे ब्याप, अनेक विस्तार एक ते भई, कर आद प्राचित गए, मन तन अंतर एक प्रभ राता, गुरु प्रसाद नानक एक जाता, श्लोक फिरत फिरत प्रभे आया, परया तो शरण आए, नानक की प्रभेंती अपनी भक्ति लाए, अष्टपदी। जाचक जन जाचे प्रवदान, कर कृपा देव हर नाम, साध जना की मांगो तूर, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर, सदा सदा प्रभु के गुण गाओ, साथ साथ प्रभु तुम्हें ते आओ, चरण कमल से लागे प्रीत, भगत करूं प्रभु की नित नीत, एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभु सार, प्रभु की दृष्ट मां सुख होए, आरस पावे बिरला कोए, जिन चाख्या से जन तृप्ताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने, सुपार परे प्रेम रस रंग, उपजै चाओ साध कै संग, परे शरणान सब त्याग, अंतर प्रगा संदिन विलाग, बड़ भागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए, सेवक की मनसा पूरी पही, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन को प्रभ होयो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल, बंधन काट मुख जन भया, जन मरण दू भ्रम गया, इच पुन्नी श्रद्धा सा पूरी, रव रया सत्संग हजूरी, जिसका साथ लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए, सो क्यों बिसरै जे काल न पाने, सो क्यों बिसरै जे किया जाने, सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरै जे अगन मै राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै, सो क्यों बिसरै जे बिखते काटै, जन्म जन्म का टूटा गाटै, गुर पूरै तत है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन के आया, साजन संत कर

सिमर सिमर सिमर सुख पावहु, आप जपहु अवरह नाम जपावहु। भगत पाए तरिय संसारु, बिन भगति तन होसी चारु। सर्व कल्याण सुख निद नामु, बूढ़त जात पाए विश्राम। सगल दुख का होवत नास, नानक नाम जपो गुण तास। उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ, मन तन अंतर ही सुआओ। नेत्र उपेक दर सुख हुए, मन विकसै सा चरण धोए। भगत जना कै मन तन रंग, बिरला को पावै संग। एक बस्ती चै करमया, गुर प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्व समाए। प्रभ अक्षण दीन दयालु, भगत वचल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल। आद गुरु कारण करतारु, भगत जना की प्राण धारु। जो जो जपै सो होए पनीत, भगत भाई लावै मन हीत। हम निर्गुण यार नीच जानु, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्व बैकुंठ मुक्त मुख पाए, एक निम करके गुण गाए। अनेक राज भोग बढ़े आई, हर के नाम की कथा मन पाई। भव भोजन का पर संगीत, रसना जपती हर हर नीत। भली सुकरणी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरुमंत। सास

आपे ही फिर जाप अष्टपदी। जब कार्य कछ न दृष्टिता पापुन तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संक मात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर्क शोक किसह व्यापत, जब अपना पापार ब्रह्म तब मोह का किसोवत परम। अपन केला वर्ती जा नान करने हार न दूजा, जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त को किस को गनी। जब एक हरगम पार तब नरक सुर को कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभ सैव सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जो तर है तब कवन निडर कवन कत डरे, अपन चलताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख अपना सुन तय जन्म मरण को कह बिना सुन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो कि सोए। जब विगत गोचर प्रवेका तब चित्रगुप्त किच पूछत लेका, जब नाथ निरंजन गोचर गाते तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे। अपन आप आपिय चर जा नानक अपन रूप आपिय पर जा, जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन कुमान कौन अभिमान, जय स्वरूप केवल जगदीश तय चल चिद्र लगत को कीश। जय ज्योत स्वरूपी जो संग समावै तय किसै भूकवन त्रिपतावै, करन करावन करने हार नानक करते का नाही सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई, जय सर्व कलाया पैपरवीन तै वेद कतेव का कोचीन। जब अपन आप आपुरता है तो सगन अब सगन कहा विचार है, जय अपन ऊंचापन अपनेरा तै कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्मात नानक अपनी गत जानू आप, जय अचल अचेत भेद समाया मुहा किसह व्यापत माया। आपस को अपह आदेश त्यो गुण का नाही प्रवेश, जय कह एक एक भगवंता तय कौन चिंत किस लागे चिंता। जय अपन आप आपतियारा तय कौन कथे कौन सुनने हारा, बहु बेअंत उचते उच्चा नानक आपस को आप पहुंचा। जय आप रचियो प्रपंच का त्यो गुण मैं किन्नो विस्तार, पाप उनते पई कहावत को नर को स्वर्ग बंचावत। आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै पार, दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की उपख्यान। अपन खेल आप कर देखे खेल संकोचे तो नानक कह, जय अभिगत भगत है आप जय पसर पासार संत प्रताप। दुह पा काया पे तनी उनकी शोभा नू बनी, आप कौत करे आनंद चोज आप रस भोगन निर्जोग। जिस भाव है तिस आप ना इलावे, जिस भाव है तिस खेल खिलावे।

पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुर का सुनो उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख साथ साथ सिमरह गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस नित त्यागु तरंग संत जना की तूर मन मांग आप छोड़ बेनती करहो साध संग अगन सागर तरहो हर तन के पर लेहो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल हिरतन सुनत कमावत होत उधार आप करे लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय सब जना दवा जय सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजय प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे शरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभाप मिलाए मिट गए बैर भय सबरेन अमृत नाम साथ संग लैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेव।

नानक निभही के महामारी। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुखमनि सहज गोविंद गुनाम, जिस मन बसै सुहोत निदान, सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए, प्रदान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते उच पाए स्थान, बहुर न होवै आवण जानु, हर तन खाट चलै जन सोए, नानक जिसै प्राप्त होए, खेम शांत रिद नवनित, बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभु ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै माधु सगल ति उदास, सुंदर चतुर तत् कविता, समदर्शी एक दृष्टिता, ए फल तिस जन कै मुख भनी, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, इहो निदान जपै मन कोए, सब जुग में ताकी गत होए, गुण गोबिंद नाम धुन बाणी, सिमृत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपराध सासंग मिटै, संत कृपा ते जमते छुटै, जाके मस्त कर्म प्रपाए, साधु सरन नानक ते आए, जिस मन बसै सुनै।

सुखमणि सुखमृत प्रवनाम भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

एक ओंकार सतना कर्ता पुरुख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचै सोच ना होवई जे सोची लख वार चुपै चुप ना होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह सियाणपां लख होहे तां इक ना चलै नाल केव सचियारा होई है केव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाईआ है इक ना हुक्मी बखसीस एक हुक्मी सदा पवाईआ है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझाए ता हमै कहै ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने निशान गावै को गुण वडियाईयां चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खेह गावै को जी लै फिर देह गावै को जपै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी ना आवै तोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंत्र खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे परवाहो साचा साहिब साच नाए पाखिया पाओ अपार अख है मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिए जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मुख द्वार नानक एवै जानिए सब आपै सचियार थापिया न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेवया तिन पाया मान नानक गावीए गुणी निधान गावीए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हों जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई तीर्थ नावा जे तिस पावा विण भाणे के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोए चंगा नाऊ रखाए कै जस कीरत जग ले जे तिस नजर ना आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कार दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोय ना सुझई जे तिस गुण कोय करे सुनाए सद पीर सुरनाथ सुनाए धरत धवल आकाश सुनाए दीप लो पाताल सुनाए पोहे न सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुनाए दुख पाप का नाश सुनाए ईसर ब्रह्मा इंद सुनाए मुख साला हनुमंद सुनाए जुग जुगत तन भेद सुनाए सासत सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुनाए दुख पाप का नाश सुनाए सत संतोख ज्ञान सुनाए अठ सठ का इसनान सुनाए पढ़ पढ़ पावे मान सुनाए लागे सहज ध्यान
नानक भगतां सदा विगास, सुना है दुख पाप का नास, सुना है सारा गुणा के गाह, सुना है सेख पीर पातशाह, सुना है अंधे पावै राह, सुना है हाथ होवै असगाह, नानक भगतां सदा विगास, सुना है दुख पाप का नास, मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहै पिछै पछुताए, कागद कलम न लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने सुरत होवै मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोहे चोटा ना खाए, मन्ने जम कै साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पत स्यों परगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने पावह मुख द्वार, मन्ने परवार साधार, मन्ने तरह तारी गुर सिख, मन्ने नानक पवह न भिख, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावह दरगह मान, पंचै सोह दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान, जे को कह करै विचार, करते कै करने नाही सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत, जे को बुझै होवै सचियार, तवलै उपर किता पार, धरती होर परै होर होर, तिस ते पार तलै कवण जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया वुड़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए, केता तान सवाले हो रूप, केती दात जाने कौन कूत, कीता पसाओ एको कवाओ, तिस ते होए लख दरियाओ, कुदरत कवण कहा विचार, वारे आना जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन राहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पख सार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूरख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फेराहे, असंख मलेश मल भाख खाहे, असंख निंदक सिर करहे पार, नानक नीच कहै विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख काहे हे सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरां सिर संजोग वखाण, जिन ए लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमाए तिव तिव पाहे, जेता कीता तेता नाओ, विण नावै नाही को थाओ, कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, भरियै हाथ पैर तन देहे, पानी धोतै उतर सोखेहे, मूत पलीती कपड़ होए, देसा बूण लइयै ओह धोए, भरियै मत पापां कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग, पुन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख लै जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवह जाहो, तीरथ तप दया दत दान, जे को पावै तिलका मान, सुनया मन्या मन कीता पाओ,
अंतरगत तीर्थ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए, वैण गुण कीते भगत ना होए। सुवस्त आथ बाणी ब्रह्माओ, सत सुहाण सदा मन चाओ। कवण सुवेला वखत कवण, कवण थित कवण वार। कवण से रुति माह कवण, जित हुआ आकार। वेल न पाया पंडती जे हो वै लेख पुराण, वखत न पायो का दिया जे लिखन लेख कुराण। थित वार ना जोगी जाने रुत माह ना कोई, जा करता सर ठीक हो साजे आपे जाने सोई। केव कर आखा केव सालाही, क्यों वरने केव जाना। नानक आखण सब को आखै, एक दू एक सियाणा। वड़ा साहिब वड़ी नाई, कीता जाका होवै नानक जे। को आपौ जाने अगै गया ना सो है। पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक बात। सहस अठारह कहन कते बासलो एक तात। लिखा होए ता लिखी है, लिखा होए विनाश। नानक वड़ा आखी है आपे जाने आप। सालाही सालाहे एती सुरत ना पाईया, नदियां अतै वाह पवै समुंद ना जानिया है। समुंद साह सुल्तान, गिरहा सेती माल तन। कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मन होना विसर है। अंत न सिफती कहन ना अंत, अंत न करण देण ना अंत। अंत न वेखण सुनण ना अंत, अंत न जापै क्या मन मंत। अंत न जापै कीता आकार, अंत न जापै पारावार। अंत कारण के ते बिल लाहे, ताके अंत न पाए जाहे। एहो अंत न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए। वड़ा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। एवड ऊंचा होवै कोए, तिस ऊंचे कौ जाने सोए। जेवड आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड़ा दाता तिल ना तमाए। केते मंगा है जोध अपार, केते गणत नहीं विचार। केते खाप तुट है वेकार, केते लै लै मुकर पाहे। केते मूर्ख खाही खाहे, केते दुख भूख सद मार। ए पेदात तेरी दातार, बंद खलासी भाणे होए। होर आख ना सकै कोए, जे को खाए के आखण पाए। ओह जाने जे तिया मुहे खाए, आपे जाने आपे दे। आख है से पे केई के, जिसनो बख से सिफत सलाह। नानक पात साही पात साहो। अमुल गुण अमुल वापार, अमुल वापारिये अमुल भंडार। अमुल आवै अमुल लै जाहे, अमुल पाए अमुला समाहे। अमुल धर्म अमुल दीवान, अमुल तुल अमुल परवान। अमुल बखसीस अमुल निशान, अमुल कर्म अमुल फुरमान। अमुलो अमुल आखिया न जाए, आख आख रहे लिवलाए। आख है वेद पाठ पुराण, आख है पढ़े करे वख्याण। आख है बरमे आख है इंद, आख है गोपी तय गोविंद। आख है ईसर आख है सिद, आख है केते कीते बुद्ध। आख है दानव आख है देव, आख है सुर नर मुन जन सेव। केते आख है आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे। एते कीते होर करे हे, ता आख न सक है केई के। जेवड़ भावै तेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए। जे को आखै बोल विगाड़, ता लिखिए सिर गावारा गावार। सो दर केहा सो घर केहा, जित बह सर्ब संभाले। वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावण हारे। केते राग परी स्यों कहियन, केते गावण हारे। गावै तुहनो पौण पाणी बैसंत्र, गावै राजा धर्म दुआरे। गावह चित गुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे। गावह ईसर बर्मा देवी, सोहन सदा सुवारे। गावह इंद इंदासन बैठे, देवत्या दर नाले। गावह सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे। गावन जति सती संतोखी, गावह वीर करारे। गावन पंडित पढ़ न रखी सर, युग युग वेदा नाले। गावह मोहनिया मन मोहन, सुरगा माश पयाले।
गावन रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले। गावह जोध महाबल सूरा गावह खाणी चारे गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे। हिस्से ही तुदनो गावह जो तुद भावन रथे तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चित ना आवन नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई। कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडे आई। जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई। सो पात साहो साहा पात साहेब नानक रहन रजाई। मुंदा संतोख सरम पात झोली ध्यान की करहै विभूत। हिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत। आई पंथी सगल जमाती मन जीता है जग जीत। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद। आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साद। संजोग विजोग दोए कार चला वह लिखे आ वह भाग। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। एका माई जुगत व्याई तीन चेले परवान। एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण। जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान। ओह वेखै ऊना नदर ना आवै बहुता एहो वेडाण। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार। कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। एक दूजी भौ लख होहे लख होवै लख वीस। लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीश। ए तराहे पत पवड़ियां चढ़िया होए अकीस। सुन गला आकाश की कीटा आई रीस। नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस। आखण जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देण ना जोर। जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राजमाल मन सोर। जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार। जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुति थिति वार पवन पाणी अग्नि पाताल। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत। करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथै सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान। कच पकाई ओथै पाए नानक गया जापै जाए। धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पवन पाणी वैसंत्र केते कान महेश। केते बरमे घाड़त घड़िया रूप रंग के वेश। केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश। केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश। केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद। केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात निरिंद। केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कूड आनंद। सर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप। ताकिया गलां कथिया न जाहे जे को कहै पिछै पशुताए। तिथै घड़िया सूरत मत मान बुद्ध तिथै घड़िया सुरा सिद्धां की सुध। कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर। तिथै जोध महाबल सूर तिन में राम रहया भरपूर।
तिथै सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप ना कथने जाहे। ना ओहे मर है ना ठाके जाहे, जिनकै राम वसै मन माहे। तिथै भगत वसै के लो, करै आनंद सच्चा मन सोए। सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथा है ता अंत ना अंत। तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुकम तिवै तिवकार। वेखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। जत पहारा धीरज सुनियार, अहरण मत वेद हथियार। पाओ खला अग्न तपताओ, भांडा पाओ अमृत तित ढाल। घड़ी है शब्द।

ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਸ਼ਾਂਦਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚੱਕਰ ਚੇਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇਹੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੂ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਿਹੇ, ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿ ਜੈ, ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾਹੁ ਸਹਾਣ ਗਣਿ ਜੈ, ਕ੍ਰਿਪਵਣ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ, ਤਵ ਸਰਬਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਖੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ, ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ, ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰ, ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰ, ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੰ, ਨਮਸਤੰ ਅਤਹਮੰ, ਨਮਸਤੰ ਅਜੀਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੀਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਟਾਹੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੀਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਸ਼ੇਦੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਦੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਜੇ, ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਸੋ ਏਕੈ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੇਕੈ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਜੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਰਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭਰਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭੇਸੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਤਾਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਾਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧੂਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਲੋਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਸੋਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਤਾਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਥਾਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਤਿਰਮਾਨੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਧਾਨੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਹੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰ ਤਿਰਵਰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਸਰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਪ੍ਰਭੋਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਸਜੋਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਰੰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗਮੇ, ਨਮਸਤਸਰਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਜਲਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ, ਅਦੇਸੰ ਅਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਸੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭਾਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਯਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਵੈ, ਨਮਸਤੰ ਅਜਨਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਸੁਬਨਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਨੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਨੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਦਯਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਵਰਨੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਮਰਨੇ, ਨਮਸਤੰ ਜਰਾਰੰਗ, ਨਮਸਤੰ ਕਰਤਾਰੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਦੇ, ਨਮੋ ਸਤ ਅਬੰਦੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਸਾਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਵਾਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਰਹੀਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਕਰੀਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੰਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਮਹੰਤੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ, ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਯਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਅਪੂ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ ਅਪੇ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਪੀਤ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਹੈ ਅਸਰਗ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਵਰਨ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਪਰਨ ਹੈ ਅਗੰਜ ਹੈ ਅਭੰਜ ਹੈ ਅਚੂਜ ਹੈ ਅਝੰਜ ਹੈ ਅਮੀਕ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ ਅਧੰਧ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ ਅਸੂਜ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ ਅਲਾਹ ਹੈ ਅਜਾਹ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸਰੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗੰਮ ਹੈ ਅਜੰਮ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਪਰਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਪੀਤ ਹੈ ਅਬਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸਰਬਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਭੇਖੀ ਅਭੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਣੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਰਸੰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਥੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ
नमो नृत नृते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे प्रभंगी प्रमाथे समस्ती विभूते कलंकं बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज रजवेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगवेश्वरं परम सिद्धे नमो राज रजवेश्वरं परम वृदे नमो शास्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जुगवेश्वरं परम जुगते नमो नेत नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवेशु धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहसाहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं स्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो यंत्र यंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तु निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा विरद करता अदो उर्द अर्धं अघं ओग हर्ता परं परम परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तास्ततामं तेरा जोर चाचरी शंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेह हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयात शंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ती निधाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं प्रमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृशं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृद सिद्धं निवासी चरपट शांत त्वा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल शांत त्वा प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वको पूर्ण काल यत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद अशेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख न राग यत्र तत्र दिशा विशा होय फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेखत ताम हूँ नह जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मानत ताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल आखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानही जेह बेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जानही केह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिर चतुर चक मानही पुरतीन लोक चौदह के बिखह जग जाप ही जेह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जेह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्वे सवरचियो स्वयं भव गणन पंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत अपूत अलख अपेश अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उसत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रत पार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख सर्वशास्त्र ना जानही जेह रूप रंग अर रेख
परम वेद पुराण जा कह नेत पाखत नेत कोट सिमरत पुराण शास्त्र ना आवही वह चित मधुभार छंद त्वा प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस दिन अनास आजान बाहु सहान साहु राजान राज पानान पहान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आपा अपंग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपह निकाम आतदूत प्रचंड मित गत अखंड आलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ़ अंड अंड बाढ़ चाचरी छंद त्वा प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे आकामे पुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिस अधिस अदृश अकृश भगवती छंद व प्रसाद कथते किया शेज दिसे किया भिज पिस किया गंज करमे किया भंज भरमे किया भिज लोक किया अदित सुक किया अवतूत बरने के विभूत करने के राजं प्रभाहें के धर्मं तुजा हैं के आशोक वर्णय के सर्वा अवर्णय के जगतं कृति हैं के शत्रं क्षत्रि हैं के ब्रह्मं स्वरूपे के अनपाओ अनुपय के आद अदेव हैं के आप अपेव हैं के चित्रं बहीने के एक अधीने के रोजी रजा कह रही मेरे हक है के पाक बेअब हैं के गैबुल गैब हैं के अपुल गुनाह हैं के शाहन शाह हैं के कारण कुनिंद हैं के रोजी देहंद हैं के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देशाय के सर्वत्र पेशाय के सर्वत्र राजाय के सर्वत्र साजाय के सर्वत्र दीनय के सर्वत्र लीनय के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देशाय के सर्वत्र पेशाय के सर्वत्र कालय के सर्वत्र पालय के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र सोखय के सर्वत्र पोखय के सर्वत्र त्राणय के सर्वत्र प्राणय के सर्वत्र देशाय के सर्वत्र पेशाय के सर्वत्र मान्य सदैवं प्रधान्य के सर्वत्र जाप्य के सर्वत्र थाप्य के सर्वत्र पानय के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र इंद्राय के सर्वत्र चंद्राय के सर्वं कलीमे के परमं फहीमे के आकल अलामे के साहिब कलामे के हुसनल वजू हैं तमामुल रजू हैं हमें सुसलामे सलीकत मुदामे गनीमुल सिकस्त ग्रीबुल परसुत बिलंदुल मकान जमीनल जमान तमीजुल तमामे रजूअल निधान हरीफल अजीमे रजायक अजकीन अनेकुल तरंग हैं अपेद हैं अपंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुगत प्रभा है सुजुगत सुदा है सदैवं स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तु पराज है सदा सर्वसाज है समस्तु सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओवं आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिभृगं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभं सर्वपहगे सुसर्वा अनुरागे त्रिभुगत स्वरूप हैं अछिज हैं अछूत हैं कि नरकं प्रणाश हैं पृथ्वील प्रवास हैं निरुक्त प्रभा हैं सदैवं सदा हैं विभुगत स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप हैं निरुक्त सदा हैं विभुगत प्रभा हैं अनुक्त स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप हैं चाचरी छंद अपंग है अनंग हैं अपेख हैं अलेख हैं अपरम हैं अकर्म हैं अनाद हैं जुगाद हैं अजय हैं अभय हैं अभूत हैं अतूत हैं अनास हैं उदास हैं अतंध हैं अबंध हैं अभक्त हैं विरक्त हैं अनाश हैं प्रकाश हैं निचिंत हैं सुनिंत हैं अलेख हैं अदेख हैं अलेख हैं अपेख हैं अटा हैं अगाह हैं असंभ है अगम्ब है अनिल हैं अनाद हैं अनित हैं सुनित हैं अजात हैं अजाद हैं चरपट छंद त्वा प्रसाद
सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल शांतत्वा प्रसाद। नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशय अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे। न पोत्रय न पुत्रय न सत्रय न मित्रय न ताताय न माताय न जाताय न पाताय निरसाकं शरीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती शांतत्व प्रसाद। के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशु सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के उसन चराग हैं के कामल करीम हैं के राज कर हीम हैं के रोजी दहंद हैं के राज कर हिंद हैं क्रीमल कमाल हैं के हुसनल जमाल हैं गनीमल खिराज हैं ग्रीबल निवाज हैं हरीफुल शिकान हैं हरासुल फिकान हैं कलंकंग प्रणास हैं समस्तुल निवास हैं अगंजुल गनीम हैं रजायक रहीम हैं समस्तुल।

मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अर बर अगंज हर नर परपंज अन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनपव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अन शेज अंग आसन अपंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनपव अनास त्रित तर तुरास अजान बाहो एक सदाह ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अन शेज गात आज जिन बात अन झंझ गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपार अडीठ धर्म अत ठीठ कर्म अन ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना शांत तो प्रसाद करुणाल है अरकाल है खल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के धरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वंकर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणाकर है विश्वम्ब्र है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंडस है परते पर है करुणाकर है अजपा जप है अथपा थप है अकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है धरणी तृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नरनायक है खलकायक है विश्वम्ब्र है करुणालय है नृपनायक है सर्व पायक है पाव भंजन है अरे गंजन है रेप तापन है जाप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग तम संग सांत रूपे नमो परम तत्ंग अतत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो ज्योत ज्योदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अश्री शांत अजय अलय अपय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अढ़ा अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नृकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुकर्मंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनीमे हरियं करियं करीमल रहीमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सवैये सरावग सुध समूह सिधान के देख फिरे कर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पाउन के गौन कौ जात निवारे भारी पूजान के भूप भली बिद न्यावत सीस न जात बिचारे एते पहे तो कहा पहे भूपत अंत को नंग ही पाए पधारे
जीत फिरै सब दे।

आपे उतरे सुने सची बाणी। संत साजन पए सर से पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रह।

झंडे बूंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलाओ जी। वाहिगुरु सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दे राखे आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरु धाम जिन्हां तों सिख पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दी दार अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी। हे निमाणिया दे माण सतगुरु नेताणिया दे ताण सतगुरु ने ओटिया दी ओट ने आसरिया दे आसरा सचे पिता धन सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज। गुरु पिता गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज गुरगद्दी ते विराजमान दसाही पातशाहां दी जाग दी जोत धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आप जिया का कोटान कोट धनवाद शुक्र है पातशाह जी। आप जिया ने अमृत वेल तो लैके पावन तख्तां ते प्रकाशमान हो करके खुले दर्शन दीदार बख्श रहे हो महाराज जी। सतगुरु जी आप जी की पावन टहल सेवा करदियां होईयां भुलां दी खिमा कर देनी अगे तो सुमत बख्शिश करनी। सतगुरु जी आप जी के पावन अस्थान सिख गुरद्वारा सैन होजे विखे महाराज जी अमृत वेले दे दीवान सजाए गए सजे दीवाना दे विच संपूर्ण श्री सुखमणी साहब जी के पाठ होए उपरंत नितनेम दीआं पंज बाणियां दे पाठ होए महाराज जी। बाणी पढ़दियां सुनदियां सेवा करदियां विचरदियां होईयां बेअंत भुलां दी खिमा कर देनी बाणी सोध के सचखंड दर प्रवान करनी बाणी दा भाव दर आई संगत दे हिरदियां ते वसाउणा बाणी अनुसार जीवन बख्शिश करना काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो बचाउणा सिखी सिदक केसां सवासां संग निभाउणा महाराज जी। दर आई संगत दी तिल फुल भेटा प्रवान करनी सब दी हाजरी लेखे लाओ दरों करों सिखी सिदक भरोसा नाम दियां दातां तंदुरुस्ती दियां दातां बख्शिश करनियां परिवारां दे विच सुख शांति वरतौणी नाम दा प्रकाश करना दुखां दा नाश करना सतगुरु सच्चे पातशाह जी। कारोबारां च वाधे पाउणे बच्चियां नूं चढ़दी कला बख्शिश करनी बाणी अते बाणे दे नाल जोड़ना सतगुरु। जो संगतां घरां दे विच बैठ करके मीडिया दे राहीं आप जीआं दी याद विच जुड़ियां ने तिन्हां दी अरदास सभनां नूं अपने चरणां दा प्यार बख्शिश करना महाराज बच्चियां नूं गुरसिक्खी दा दान बख्शिश करना दर घर दे टहलियां नूं चढ़दी कला बख्शिश करनी भै भावनी सदका महाराज जी अपनी सेवा करन दे लाहे प्रदान करने महाराज जी। शुक्र है चार पैर रहण सुख दी बतीत कीती सतगुरु आया चार पैर दिन अपनी याद विच सुख दे नाल बतीत करौणा सरबत्र संगत दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना सतगुरु सच्चे पातशाह जी। आप जी दीआं बख्शियां होईआं दातां विचों महाराज जी कड़ा प्रसादी देग हाजर है आप जी कृपालता करके भोग लाओ भोग लगा शीत प्रसाद साध संग दे रसनी लायक हो गए जो छके सो आप जी दा नाम जपे सतगुरु जी। नारायण नरपत नम सुकारे ऐसे गुर कौ बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे ऐसे दीन दयाल सतगुरु दूसरे पातशाह धन श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी। अज आप जीआं दा पावन गुरगद्दी दिहाड़ा है महाराज जी संगतां महाराज जी अमृत वेले तो लैके आप जीआं नूं नतमस्तक होईआं सारियां ही संगतां ते सिर ते मेहर भरिया हथ रखना सतगुरु सच्चे पातशाह जी। बड़ी श्रद्धा दे भावना दे नाल महाराज जी गुरु घर विखे अज दे दिन मनाए जाणगे महाराज जी आप जीआं ने कृपा करनी महाराज जी इसे तरह गुरपुरब मनाउण दे महाराज जी बल बुद्धि समत बख्शिश करनी मेहर भरिया हथ रखना सभना दा भला करना सतगुरु जी करो कृपा। पावन पवित्र हुक्मनामे बख्शिश करके अगले दीवान सजाउण दी आग्या बख्शिश करो सही गुरमुख प्यारे मेलो जिन्हां मिलिया आप जिया का नाम चेते आवै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: नानक सच न्याय सच जो मृत मैं सो कच निकच महला पहला।
1: वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ, वड्डी वड्याई जा सच न्याओ, वड्डी वड्याई ने जाने चल थाओ, वड्डी वड्याई जा

गुरपुरै मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय में दीनो, जन्म जन्म की मैल गई। निवरे दूत दुष्ट बैराई, गुरपुरे का जपिया जाप, कहाँ करे कोई बेचारा, प्रभु मेरे का बड प्रताप। सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल रख मन माही, ताकि शरण परयो नानक दास, जानते ऊपर को नाही। वाहिगुरु जैत सरी महला चौथा, कर पहला चौपदे एक, ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे ही अरे रतन नाम हर बसिया, गुर हाथ धरयो मेरे माथा, जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुरु नाम दियो रिन लाथा। मेरे मन भज राम नाम सवे अर्था, गुरपुरै हर नाम दृढ़ाया, बिन नाम जीवन वृथा रहाओ।

था, तिन साधु चरण न सेवे कबहू, तिन सब जन में आका था। जिन साधु चरण साध पग सेवे, तिन सफल जन्म सना था। मोको की जय दास, दास दासन को हर दया तार जगन न था। हमें अंधुले ज्ञान हीन अज्ञानी,

जब पकड़ी तब ही पछतानी, जब गल पास पड़ी अत भारी, उड़ न साके पंख पसारी, रस चूक है मन मुख गावार, हाथी छूट है।

सतगुर मिलया कंचन होई है, जा हर की होए रजाए। मन मेरे हर हर नाम चित लाए, सतगुर ते हर पाई साचा, हर स्यों रह समाए रहा। सतगुर ते ज्ञान उपजै ता इह संसा जाए, सतगुर ते हर बुझी है गर्भ जोनी नह पाए। गुर प्रसादी

मस्तक ललाट लिखिया तुर ठाकुर मेटना ना जाए नानक से जन पूरन होए जिन हर भाणा पाए।

सच रहे लिवलाय। हर कै नाए सदा हरियावली, फिर सुके ना कुमलाए, बिन सतगुर किने ना पायो। मन वेख

बिन गुर दाते किनै न पाया, मनमुख लोभ दूजे लोभाया। ऐसे ज्ञानी बूझो कोए, बिन गुर भेटे मुक्त न होए। कह कह कहन कह।

आए क्यों जल में कमल अलिप्त है ऐसी बणत बनाए से सुखिए सदा सोहणे जिन विचों आप गवाए तिन सोग विजोग कदे नहीं जो हर कै अंक समाए। श्लोक महला तीजा नानक सो साला ही है जिस वस सब किछ होए तिसै सरे विहो प्राणी हो तिस बिन अवर न कोए गुरमुख।

जल थल चहु दिस वर्षदा खाली को थाउ नाही इत जल वर्ष दै तिख मरह भाग तिना के नाही नानक गुरमुख तिन सो

ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे। कहते हैं ऐसे गुरु को सानू बलहार जाना चाहिए जिसन नारायण नरपत नमस्कार। सारा ब्रह्मण उस नमस्कार करता है, उस पूजता है, उसका ध्यान करता है। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह अपने इस पावन शब्द राही सू समझा करते हैं कि भाई जी की बिरथा होए सो गुरु पहे अरदास कर। जब भी कोई गल हो तेरे मन के अंदर तू गुरु के कोल आके बैठ के उस अगे अरदास करनी है, वो इना समर्थ है कि तेरे मन की बुझ के ते मन की पूरी भी कर देगा। ऐसे गुरु तो अपन बल खा जाना चाहिए आप मुक्त